0: तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। अब गुणस्तरीय फर्निसिंग सम्बन्धी सबै सामग्री एउटै छानामुनि छानी छानी छानी नवमोडन फर्निसिंग सेन्टर पोखरा 7 मासबारमा
1: विभिन्न साइजका दराज पलङ डाइनिङ टेबल सोफा टिभी क्याबिनेट एवं आवश्यक अनुसारका फर्निचर सम्बन्धी सामग्री चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क नवमोडन फर्निसिंग सेन्टर पोखरा 7 मासबार मदरल्यान्ड मावि सँगै सञ्चालक गुरुप्रसाद बराल मोबाइल नम्बर 9840202127।
0: हामी न्यू रोडबाट आफ्नै उद्योग पोखरा 7 मासबारमा सरेको समस्त ग्राहकवर्गहरूलाई जानकारी गराउँछौं।

तामा पीतल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-1254 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-1254 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9705508 मुल्तरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सब को लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल अरू भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस
2: कन्ट्याक्ट 0615553050 0615589848
1: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-1254 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारी में जाने मनसाय बनाई रहनु भएको छ भने नागढुंगा पोखरा में रहेको नेशनल एक्सपोर्ट मेनपावर कंसल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। दुबई कतार साउदी मलेसिया सहित रोमानिया लगायत का यूरोपियन राष्ट्र का विभिन्न कंपनी में वैदेशिक रोजगारी को सुवर्ण अवसर कुक किचन हेल्पर वेटर सिक्युरिटी गार्ड फैक्ट्री वर्कर डेलीवरी बॉय ड्राइवर हाउसकीपिंग हेल्पर क्लीनर लगायत का क्षेत्र में वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्। खाना बस्ने को सुविधा सहित मासिक तलब न्यूनतम 40,000 देखि 1,00,000 सम्म सम्पर्क नेशनल एक्सपोर्ट मैनपावर कंसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड नागढुंगा पोखरा कास्की फोन नंबर 061-553-071 98067-81234 97050-77123 व्हाट्सएप नंबर 98011-77123।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पो

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 55 057 मुन्सरा तात चिकन बिरयानी पोखरा।

0: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
1: वेस्ट सर्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
0: अब सब को लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस
2: कन्ट्याक्ट 0615553050 0615589848
0: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np
3: पालीको तिजमा रातो साडी सर्के तिलारी कानमा झुम्का अनि गलामा गहना अहा म किन्दिन यसपालिको तिजमा त म दिदी बहिनीहरूसँगै बसेर श्रद्धा र पूर्ण आस्थाका साथ मनाउने छु अनि तपाईँ नि
4: परिवर्तनको शुरूआत आफैबाट सार्वजनिक हितको लागि रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज

राम माइंड पे नहीं, कृपा कृपा कृपा। बाकी तिमरो पूजा पाठ तीर्थ यात्रा सब गए खोला खोले। एक उपाय कृपा द्वारा नहीं, और कुने उपाय छे न, सब यही बताऊं। ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसा मद्वैत वासना दत्तात्रय हर्ष अवधूत। उनले बताए केवल ईश्वर को अनुग्रह द्वारा कृपा द्वारा और उपाय छेन। परातु तच्छ्रुते हा ब्रह्म सूत्र, इसको भाष्य लेखे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ले पनी बताइए, तद अनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितु मरहति। अनुग्रह द्वारा नहीं, भगवान को कृपा द्वारा नहीं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी बताते छन। तेसे को फॉलो करे जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी ले, रामानुजाचार्य जी ले, माधवाचार्य जी ले, कृपा कृपा कृपा और कुने उपाय छे, कृपा द्वारा नहीं। कहता वरब बकुम अला, इस्लाम धर्म पनी बन्छ, अल्लाह को कृपा द्वारा नहीं अल्लाह ला जान न सक्छो, अरु कुने उपाय छे ना। गॉड इज रिच इन मर्सी फॉर हिज ग्रेट लव, उसको जुन मर्सी छ दया कृपा द्वारा नहीं हमी गॉड लाई जान न सक्छौ, बाय विल बन्छ। फॉर बाय ग्रेस यू आर सेफ, Not of yourself, it is gift of God, by will. उसको कृपा द्वारा नहीं तिमले अहिले सम्म जे प्राप्त गर्या छौ, यो देह मानव देह जुन छ यो पनि उसको कृपा द्वारा प्राप्त भयो, तिम्रो कुनै कमाल छैन।